सब फोकट ने चोकर में कहो नानक ने चौंत्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना।

ਤਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ।

आपे ही करना कियो कलापे ही तय धारी है। देखा किता अपना धार कच्ची पक्की सारी है, जो ऐसो चल सी सब कोई आई बारी है। जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मन हो विसारी है, अपना थी अपना आपे ही का सवारी है, आपे ही का जो सवारी है।

चाकरी जे चले खसमे पाए हुरमत तिसनु अगले वजब गणा खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए बचो को अगला मोह में पाना खाए जिसने दिता खावना तिसके ये साबास नार को गुना चले नाल खसम चले अरदास नाल खसम चले अरदास जनांग

औड़ी नानक अंत ना जापनी हरता के पर बार आप कराए साखती फिर आप कराए बार एक नागली जंजीरियां तुरी चढ़े बसियार आप कराए करे आप हाओ कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिसे ही करनी सार फिर तिसे ही करनी सार।

0: सब के तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद उदाई तुद कर माण मत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा नानक दासन दास दया गै बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तृत महत दिवस रात दोय दाई दाया केले सगल जगत चंगे आया बुरे आया।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात आर पात नहन जिह रूप रंग अर रीख पीख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश।

साहि साहण गणिज त्रिपावन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत सेव रहता गुरपूरा पायो बड़ भागी लेव लागी मेदन पार सहता पै पंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बकता कोल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता गुर पारस हमलोह मिल कंचन होया राम ज्योति ज्योत मिलाई

मन रे षाडह परम प्रगट होए नाचह या माया के डांडे सूर के सन मुख रन ते डर पै सती

होवैसे फतख सम्मदी नूर अर सह कोर सह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहदै साहु जिस पास बैठिया सोहिया साबनादा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु साबनादा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहदै साहु जिस पास बैठिया सोहिया साबनादा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम तत् सारा केल बिख काटे निमख अराध्या गोरमुख पार उतारा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम तत् सारा केल बिख काटे निमख अराध्या गोरमुख पार उतारा हर रस पीवह पुरख ज्ञानी सोने सोने महा तृपत मन पावै

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: Thank you.

ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰ, ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੈ।

निमाण्यों के मान तान्यों के तान ओटियों की ओट ने आश्रियों

ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਦੋ ਪਦੇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।

मेला कृपा गुण गा मांगो दान ठाकुर।

ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

안 돼, 안 돼.

0: ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ
1: ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਪਾਠ ਤੇ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

गए मशक्कत काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

डोलन ते राखो।

ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: आसा महला पहला, सुन वड्डा आखे सब कोए, केवड वड्डा डीठा होए, कीमत पाए न कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहेबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा किता, केवड़ चीरा रहाओ, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया, तोद विण सिद्धि किने न पाईया, कर्म मिले नाही ठाक रहाईया, आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवार नहारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसर मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लग भूख, उत भूख खाए चलिय है दुख, सो क्यों विसर मेरी माए, साचा साहेब साच नाए रहाओ, साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाए, ना ओह मर न होवै सोग, देंदा रह न चुकै भोग, गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात, खासम बसार है ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, विनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वड़ भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृपतास है, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम, जा आहर हर जियो परे, सैल पत्थर मह जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर धरे, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरे, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की धरे, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भाव करे, ऊडे ऊडे आवै सै कोसा, तिस पाछे बचरे शरे, तिन कवन खलावे।

जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पार वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपार। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार। हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे जोज विडान। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखान। जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरवान। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई। जो तो भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर वेखै जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तेत सरवरड़ पहिले निवासा। पानी पावक तिन्ह किया पंक जो मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबियले मन एक न चेत समूढ़ मना। हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया।
प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाहीं विसरिया। आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया। अवर काज तिर कित न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरण कै जन्म वृथा जात रंग।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सबे तुम काबहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी वसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब वैरन को आज संघरिय। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझ जो करियो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिव जू अवतर। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतार, सोई गुरु समझियो हमार। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर यस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताका कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। आंडज जेरज सेत जकीनी, उतपुज खान बहुर राच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमंड भयो शंकर अकैठा। शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दोस्त जीते उठवा त्यो तपाता, सकल मलेश करो रण घाता। जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दोस्त दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्व सकै न कोई।
एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उवारा।

सवैया पाए गहे जावते तुमरे तावते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहें हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सा।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक अनन शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह न

गुरु बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रिथो मैं सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी का वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवण का सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की बैज पंथ की जीत, श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नू सिखी दान के सुदान रहत दान, बाबेग दान विसाह दान भरोसा दान धना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जोगी अटल, धर्म का जयकार बोलो जी

अपराध करत है जिते, जननी चीतना राखस तेते, रामैया हों बारक तेरा, काहे न खंडस अवगण मेरा, जे अत करोप करे का।

चिंत पवन मन परियो हमारा, नाम बिना कैसे उतर सपारा। देह विमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलहो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगुण हमारे। दया करहो किश मेहर उपावहो, डूबदे पत्थर तारे। जीअड़ा अगन बराबर तपे, पीतर वगै काती। प्राणवत नानक हुकम पछाणे, सुख होवै दिन राती। दर्शन प्यासी दिन सुरात, चित वो अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीता।

ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।

जावहि निरतन देखियो नरक संग षाड सब भागे कहो कहा या मन बौरी को इन स्यों निहो लगायो दीना नाथ सगल पै पंजन जासता को विसरायो स्वान पूछ ज्यों पयो न सूदो

राखो हो नाम तुहारो लीनो स्वान पूछ ज्यों पयो न सूद बहुत जतन में कीनो नानक लाज बिरद की राखो हो नाम तुहारो लीनो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਗ

ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਿਹਚਲ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਾਰਨ।

ਰਾਜੈ ਸਰਬਧਾਰ ਸਰਬ ਕੇ ਨਾਇਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਫਲ ਸਫਲ ਸਫਲ ਦਰਸ ਰੇ।

Tak.

Thank you.

Oh.

भरत षड् भिख भिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखहु शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखहु शरणाई सुकहु टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परस आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो वैस फतख समदी नूर और सोह कुर सोह चटिया तुद डठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह।

दशाहो जिस पास बैठिया सोही सब नादावेसाहो सज्जन सच्चा पातशाहो सिर शाह जिस पास बैठिया सोही सब नादावेसाहो सतनाम श्री साहिब जी सोरठ महला नावा यह जग

सागल जगत अपने सुख लागियो, दुख में संग ना हो।

दुख में संग न होई दारमीत पूत संबंधी सागर तन से लागे जब ही निर तन देखियो नर का संग शाड सब भागे कहा ए अमन बौरी का इन सियों ने हो लगायो दीना नाथ सगल पै पंजना जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यों पायो न सुदा

लाज बिरद की राख हो, नाम तुहारा लीना, स्वान पूछ ज्यों पायो ना सुदा।

लाज बिरद की राख हो, नाम तुहारा लीना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मऊ, हस्त काया रखिया परमेश्वर, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वराय, सर्व रखिया गुरदयाल है, पै दुख विनाशन है, भगत वशल अनाथ नाथे, सारण नानक पुरख अचुत है, बिलावल महला पंजवा, ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म सरणाई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एक काल बलाई, रहाओ राख लिए तिन रखण हार, सब ब्याध मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई, सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीरत आखिए करत का होए बिचारो, तित कर गावो सोहिला, सिवरे हो सिरजनहारो तुम गावहो, मेरे निरभौ का सोहिला, हौ वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ, नित नित जीअड़े संभालियन देखेगा देवनहार, तेरे धन कीमत ना पवै ते सदा ते कवन समार, संबत साह लिखिया मिल कर पावहु तेल, देहो सज्जन असीसड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों बेल, कर कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन, राग आसा महला पहला, शकरश गुरश उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख बढ़ाई तोए, रहाओ विश्वे चस्या घड़िया पहरा, थित्ती वारी माहो होआ, सूरज एको रोते अनेक, नानक करते के केते वेस, राग तनासरी महला पहला, गगन मैथाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल अनलो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी, रहाओ सहस तब नैन नन नैन, हह तोहे काओ सहस मूरत नन एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध विचलत मोही, सब में जोत जोत है सोए, तिस दै चानण सब में चानण होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत इस पावै सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, वन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देहे नानक सारंग को,
ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਵਾਸਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰ ਖਿਮਾ ਤਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਥ ਸਮਾਨੇ।

जित भगत अघाणे, गुरु नानक अंगद अमर भगत हर।

ਬਾਜੇ ਹਗਵਾਈਏ।

खंडावर भंडा अंडज जेरज उतभुजा खाणी सेत जा सोमित जाने नानका सारा मेरा जनता नानक जंतु पाय कै सम्माले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनीता।

0: नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या ताग महला पहला।
1: लख निकियां चंगियां लख ना परवान लख तप उपर तीर्थां सहज जोग बेवान।

0: पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेते यार जा, पढ़ी है जेते सास, नानक लिख एक गल और हो मैं चखना चाह मंदा पहला।
1: लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहुत ही।

in the morning.

0: जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर, नानक वखाणे बेनती खुद बाज कूड़ कूड़ मल्ला पहला।
1: सच ता पर जानी जड़ दे सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए, सच ता पर जानी जल सच तरे पिया, नाओ सुनवर हसिया ता पाए मुख दुआ, सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जी, तरत काया साथ के विच दे करता भी, सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किश पंडान करे।

ਸਚ ਸਮਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ।

0: Father, and
1: सत नाम श्री वाहे गुरु।

0: सुर नरेसुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे आसुरे नर गंगल रेखो जंत फिरे। अविनाशी अचल अजूनी संभो पुरखोत्तम अपार परे। करण कारण सम्राट सदा सोई सरजी मन ते आयो श्री गुरु रामदास। जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंदियो। अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो। श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो।
1: नारद ध्रुव प्रह्लाद सुदामा पब भक्त हर के जू गण अम्बरीक जय देवत लोचन नामा अवर कबीर परंग। तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगतर पर सायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो। मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तनंग। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्स परस पारस सर बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै

मिल संगत धन धन करो, जिह सतगुर लग प्रभ पाइया, सो सतगुर सिमरो नरहो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़ो पास, ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नास। कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास, जिवे अंगद अंग संग नानक।

भगत प्रेम लेवलाई ताते अंगद अंग संग भयो।

सच सल पण तू अटल राज अपग दल।

ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ

सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो उरे आद पुरख पर तखे लिखियो अक्षर मस्तक तुरे प्रगट ज्योत जगमगै तेज भूमंडल छायो पारस परस परस परस

ਜਿਹ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ।

परम कपूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक

0: उस पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरना।
1: सो कहो टल गुर सेविय एहन ससहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी पटी। सजन सचा पातशाह सिर सहांदे सा, जिस पास बैठिया सोही है सवना दावे सा। सजन सचा पातशाह सिर सहांदे सा,

ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।

अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत जुग है नहीं दूरे हर रस चोग चुग है प्रभ पावै।

राख राख चरण धरे विचारी, दोबेदा छोड़ भय निरंकारी।

तेर पवन जोत रही लिव लाई, सुर नर नाथ सच्ची शरणाई, आनंद मूल अनाथ अधारी, गुरमुख भगत सहज विचारी, भगत बछल भय काटन हारे, होमे मार मिले भगतारे, आनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुविधा खोवे, आप ना चीनस भ्रम भ्रम रोवे, कह तो पढ़ तो सुन तो एक, धीरज धर्म धरनी धर टेक, जात सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर के शब्द परम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाच साच स्वरूप, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर के शब्द परम पौ भागे।

जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला, घर दूजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ भावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे।